0: सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो अभी भजन लगाया वो भी बहुत अच्छा सुनाया, लाल चूड़ियां, उसके लिए धन्यवाद।
1: इतनी अच्छी बातें कर कर गई हैं आप। आपने कहा कि आप फ्राइडे को नहीं आई थी, समय मैं तो थी पर मैं सिर्फ यहाँ नहीं थी, मैं SSD टेम्पल में थी, लोअर कबेटे रोड, हमें वहाँ दिवाली बाजार था। वहाँ से वक्फे वक्फे के बाद हम आपसे खिताब भी कर रहे थे, पर इतना ब्यूटीफुल बाजार उन्होंने सजाया हुआ था दिवाली का, इतने ज्यादा स्टॉल्स थे। बनी शाह जो ऑर्गेनाइजर हैं और राजू, इन्होंने तो कमाल ही कर दी। तो समिन हमने भी जाके देखी, क्या ब्यूटीफुल चीजें थी उनसे दिवाली बाजार। और इसलिए मंजुला विश्वकर्मा फ्राइडे बात नहीं हो सकी, आज इंशाल्लाह यहीं से कर रहे हैं आपकी खिदमत में। और रसीला ने एक और मैसेज भेजा है, व्हाट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डे फॉर साउथ अफ्रीका, फ्रॉम अ डर्बन ड्रस बस ड्राइवर्स डॉटर टू द नोबेल पीस लॉरिएट। क्या बात है, नवी पिले कहते हैं उन्होंने तारीख बना दी है, एट द एज ऑफ 85 डर्बन बोर्न जज नवनीतम नवी पिले हैज बीन अवार्डेड। समिन वो 85 साल की हैं, जब ये मिला है पुरस्कार खड़ी हो के बिल्कुल अलर्ट, और उनको उन्होंने तंज भी किया ट्रंप पर, कहते ज्यादा तालियां बजाओ, हो सकता है कि मैं ये बांट लूं इनाम उनके साथ। पर देखें 85 साल नवी पिले तो बिकमिंग द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन वुमन एंड द फिफ्थ, मुझे इतना पता है साउथ अफ्रीका में तो बड़े पुरस्कार मिले, फिफ्थ साउथ अफ्रीकन टू रिसीव दिस रिमार्केबल ऑनर, पांचवी हैं साउथ अफ्रीका में, पांचवी हैं ये पाने वाली। बट द स्टोरी बिहाइंड दिस अचीवमेंट इज इवन मोर इंस्पायरिंग। बॉर्न इन क्लेवर डर्बन 41, नवी वॉज द डॉटर ऑफ अ बस ड्राइवर, इनके पिता बस चलाते थे। Her family could not afford uni, but her school principal recognized her potential and members of her community helped raise the money and give her education. Samin chande pe padi hain. Just imagine a community coming together to help a child. Parveen ji, long but interesting read. Kafi zyada lambi hai The Nobel Committee recognized her lifelong commitment to promoting peace and international law. Today she joins kis kis ko mila hai Samin South Africa se Nobel Peace Prize, Albert Luthuli, Desmond Tutu, Nelson Mandela aur ek gore Frederick W. de Klerk, inko bhi mila tha. वैसे ये डिजर्व भी करते थे, उन्होंने एपाटाई मिटाने के लिए बड़ी कोशिश की थी डक्लर्क ने। एंड परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी इज रिमेम्बरिंग वेयर इट ऑल बिगेन, अ स्कूल प्रिंसिपल सीज हर पोटेंशियल। चलिए दुआ करें उस प्रिंसिपल के लिए भी। खैर समिन यहाँ चलते हैं रिक्शे में।

0: लाला कहाँ चलोगे बाबू कहाँ चलोगे लाला कहाँ चलोगे बाबू कहाँ चलोगे लाला मेरे पिशा वाला मेरे पिशा वाला।
1: जान डाल दी मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने में। वैसे तो रिक्शे के दो चार ही गाने हैं, ज्यादा नहीं है। और भास्कर पटेल मैनचेस्टर से रिक्शे की राइड एंजॉय कर रहे थे। और सलीदार इन लंदन आपका मैसेज मिल गया है। और धीरूभाई लखानी आपका भी। रमेश हरिया कहते हैं कि एआई का जमाना है, आप जो भी सवाल पूछो फट से जवाब मिल जाता है। तो हमने ट्रंप के बारे में पूछा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जवाब मिला इन हिज ब्रेन ऑन द लेफ्ट साइड देर इज नथिंग राइट, ऑन द राइट साइड देर इज नथिंग लेफ्ट। कमाल है रमेश हरिया। कहते हैं हमने देखा है कि दाएं साइड पर ना कुछ भी ठीक नहीं है और जो दाएं साइड है उसमें कुछ रहा नहीं है। बहुत खूब रितु। देयर्स 89 स्टॉल्स इन द दिवाली बाजार, या 89 करीब 90 थे रितु गुप्ता। और यासर आज तारीख में क्या हुआ है, कहते हैं येस्टरडे वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्टूबर 12th। समझ हर साल सेलिब्रेट करते हैं लेकिन बच्चों की लड़कियों की तिजारत चलती जा रही है। In 68, Equatorial Guinea gained independence from Spain. Equatorial Guinea ko Spain ne chhod diya, shukar hai. 1822, Brazil formally declared its independence from Portugal. Achha, Brazil. Samein, pura Europe dunia pe chhaya hua tha. On October 12, 2019, Kenya athlete Eliud Kipchoge made history in Vienna, Austria, became the first human to run a marathon in under 2 hours, 2 ghanton se bhi kam waqfe mein, finishing with a time of 1:59. Achha, October 12 marks the Salgira birthday of Maulana Hazar Imam, His Highness Prince Rahim Aga Khan the 5th. Bahut khoob, bahut acche, yes sir. मैं रिक्शा वाला कीर्ति को इतना पसंद आया है। एक दफा मुझे किसी ने कहा ये कभी मैंने सुना ही नहीं, मैंने कहा रियली? कहते हैं हाँ वाकई कभी नहीं सुना था मोहम्मद रफी साहब का, इसीलिए मैं आजकल कभी कभी सुना देती हूँ।

0: the R&B royalty, the ladies man, Neo, is coming live to Nairobi this 20th October, Mashujaa Day.
1: What's going on? This is Neo. October 20th, I will be in Nairobi and I cannot wait to see you.
0: Experience Neo at the One Night Only Brunch Edition at Ulinzi Sports Complex, Langata.
1: I'll be performing all my global hits. You better be ready to sing and dance along with me.
0: And listen carefully. We have a special couples bundle ticket for two for only 20,000 Kenyan shillings. But they are limited too. So visit ticketyetu.com now. There are also gold tickets for 15,000 shillings and 40,000 shillings platinum. It's Neo. One night only. R&B brunch experience.
1: Kenya, I'm coming. So grab your tickets now so we can have a party.
0: 20th October at Ulinzi Sports Complex, Langata. Brought to you by Fennin and Radio Africa Group. Powered by Stanbic Bank. Pay with your Stanbic World Elite credit card and enjoy exclusive cashback rewards, including 5% cashback on gold couple tickets and 10% cashback on platinum tickets. With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News.
2: P.S. Felix Koskei has called for heightened preparedness and tighter border surveillance to prevent the spread of Ebola following a reported case in the country. Koskei has urged officials to treat the threat seriously, warning that the disease could cost lives if not contained. He also cautioned against politicizing the response, calling for coordinated action to protect public health.
3: Contacts are under quarantine over the 21-day period, and His Excellency the President has directed part of surveillance, laboratory readiness, rapid response teams, and are being monitored.
2: At the same time, the PS has urged government officials to ensure expected El Nino rains do not disrupt national examinations. He called for measures to protect candidates across the country and ensure they sit their examinations without interruption. A 45-year-old man has drowned in River Nyando, Kisumu County, while collecting spilled fuel from a damaged Kenya Pipeline Company pipe. Frederick Ouma Sombe reportedly suffocated before slipping into the water. His body was recovered downstream from Kibigiro Railway Bridge and taken to Otho Funeral Home for a postmortem. The damaged pipeline has since been repaired. Political analyst Javas Bigambo says law literacy levels and political ignorance, especially in rural areas, could be fueling tribal politics in Kenya. He urges the country to improve literacy levels and calls on political parties to promote ideologies during campaigns instead of insults and name-calling.
4: The leaders take advantage of the ignorance and tribal partisan interests of the voters. Most leaders are not discussing critical issues that are pertinent to the progress of the society and the development of the people themselves.
2: That's a news update on East FM. I am Sharon Dalila.
0: East FM, Kenya's premier Asian mix.
5: Bemisaal Andaaz with Parveen Atom.
6: और सुनते हैं कि रेखा वालिया ने क्या कहना है, फिर आगे बढ़ते हैं.
7: Parveen जी, आपको व बेमिसाल के सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार. आज मैं कुछ लाइनें जीभ और दांत के रिश्ते पर बोल रही हूं. जीभ और दांत का रिश्ता. जीभ और दांत दोनों रहते हैं साथ साथ, एक सख्त है तो एक मुलायम, पर हैं सच्चे हमदम. इनके रिश्ते हैं ऐसे मियां बीवी हो जैसे. जीभ, जीभ पतली सी कोमल और नाजुक, और दांत पति सा स्ट्रॉन्ग और मजबूत. दांत चबाते हैं और जीभ उसका स्वाद पाती है. जैसे कि पति कमाता है और बीवी यानी कि जीभ उसका स्वाद पाती है. जीभ चंचल व चुलबुली बातें बनाती रहती है जब तक खुली है, और दांत यानी कि पति स्थिर, थमे हुए और सख्त जान होते हैं. चुपचाप बिना शिकायत के करते हैं काम. बस जब थक जाते हैं तो किटकिटाते हैं, और जब जीभ ज्यादा किटकिट करती है तो उसे काट खाते हैं यानी कि दांत भी देते हैं, मगर फिर भी दांतों की तरह उसे आगोश में छिपाते हैं. और दांत के बीच में जब भी कुछ फंस जाता है, जीभ को यानी कि पत्नी को झट से पता लग जाता है और वह फंसे हुए कचरे को निकालने सबसे पहले पहुंच जाती है. और जब तक कचरा निकल नहीं जाता, जीभ कोशिश किए जाती है. जैसे कि पति की हर पीड़ा पत्नी समझती है और उसकी हर मुश्किल में आगे बढ़कर मदद करती है. जीभ और दांत पति पत्नी जैसे दिन भर अपना अपना काम करते हैं और रात को चुपचाप एक ही साथ एक ही कमरे में सोते हैं। ये है जीभ और दांत का पति पत्नी जैसा रिश्ता। थैंक यू रेखा।
6: क्या बात, हाथी के दांत। अब देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि वेल यू नो व्हाई, यू नो हु डिडंट विन द नोबेल पीस प्राइज वंस अगेन। मीनवाइल कहते हैं थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल टेंस एट मार-अ-लागो। नॉट टू वरी मिस्टर ट्रंप, अभी फीफा पीस प्राइज होगा आपके लिए। क्या बात है हितेन, हितेन कहते फीफा का इनको पीस प्राइज दे देंगे। कमाल है दिनेश पोपट।
8: एक सवाल, है क्यों?
9: नमस्कार प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू वीक। विशिंग हजर इमाम अ वेरी हैप्पी 55th बर्थडे। Enjoying your show as always. Thank you, Dinesh Popat from London.
6: Oh, Tanzania session as but Rasila. Wow, what a nice song. Pyase Panchi, beautiful. Ye Rasila ko pasand aa gaya hai. Parveen ji, looks like Mahmood is favored today. A couple of hit songs. Ye na jaane kahan se lekin ho gaya hai. और आपने कहा सॉन्ग्स मेक अ डे मोर इन्जॉयबल, ऑफ कोर्स। फिर आप गुनगुनाते भी तो हैं ना, हैप्पी नवरात्रि किसने कहा है सारी दुनिया को। शैलेश शेट, बहुत अच्छे शैलेश शेट। और अब देखते हैं समिन, वो जो प्यारी सी मैंने कहा था कहानी बताऊंगी आपको कि थोड़े में कुछ लोग कितने खुश होते हैं, वो इसके बाद।

और कीर्ति कहती है वाओ, एक के बाद एक एवरग्रीन क्लासिक सॉन्ग्स। वाकई कीर्ति आप भी एंजॉय कर रही हैं, हम और सभी। समय एक छोटा सा किस्सा, बैंक का सुरक्षा कर्मी, नाइट गार्ड होता है रात के वक्त, ये चौकीदार बैंक का। अब आमतौर पे हम इनको तवज्जो कहाँ देते हैं, लेकिन कोई देख रहा है इनको इमारत के ऊपर से, और नीचे ये सिक्योरिटी गार्ड है। अब उसने देखा, जिसके हाथ में कैमरा है उसने देखा कि ये सिक्योरिटी गार्ड जाके एक छोटे से मेज पर बैठ जाता है, रात है, और वहां से आ रही है एक प्यारी सी बीवी, हाथ में उसके टोकरी है, आके बैठती है दूसरी, मतलब सामने वाली कुर्सी, छोटा सा मेज है, छोटी सी कुर्सी है लोहे की, तो उसके ऊपर बैठती है, टोकरी को खोलती है, खाना निकालती है डिब्बे समेत, खाना उस पे रख देती है। ये नहीं कि अपने खाविंद को खाना देकर चली जाए, साथ बैठकर उसके खाना खाती है। इनको देखा जाए तो समझ, इतने एक दूसरे में मगन है, एक दूसरे को मजे से बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पति और पत्नी बैठकर। ऐसा समझ किसी फाइव स्टार होटल पर कोई पत्नी या पति नहीं हो सकते, इतना लुत्फ लेने वाले। और समझ हैरत अंगेज ये जो मंजर था, कैमरे में बंद हुआ तो वायरल हुई इन दोनों की सिर्फ खाना खाने की वीडियो। अब सामने कई बार तो ऑफ कोर्स ये जो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड साथ अपने टिफिन ले आते हैं, लेकिन नहीं, वो बीवी घर पकाती है, पहले शॉपिंग करती है, काटती है, पकाती है, उसको पैक करती है, और फिर उसको छोड़ के नहीं, बैठकर उसके साथ खाना खाकर, बर्तन समेट कर, टोकरी में डालकर वो चली जाती है। सामने ये वायरल हो गई है, क्या बात है। समय कितना सफर करके आई है ये नहीं पता कि फासला कितना तय करके आई है अपने खामिन को गर्मा गर्म डिनर देने, और है वो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड।

0: इस्तीफा फ्रॉम मंगाटा रुंगाए समय. ये जो मैंने इंसिडेंट मेंशन किया ये इसलिए ही है कि आप देखें कि वो कहती हैं आरफा के देखो वो बेशक एक सिक्योरिटी गार्ड है लेकिन किसी के लिए वो उसका सर का ताज है, सरताज है. बिल्कुल यही तो बताता है वो किस्सा आपको कि कितनी मोहब्बत है उन दोनों में. शोभना और दिनेश, पेशेंस विद फैमिली इज लव, पेशेंस विद अदर्स रिस्पेक्ट, पेशेंट विद सेल्फ इज कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस विद गॉड फेथ. शोभना और दिनेश बिल्कुल. और रूपल कहती है उफ उफ आज सखी मेरे मन में, और फिर ब्यूटीफुल वन आफ्टर अनदर मेलोडी, मजा आ गया स्पेशली द कोरस. यस आई लव देयर कोरस. और उमर, अच्छी बात है उमर ने फ्राइडे को भी कहा कि आप हैं कहाँ, पर आज हैप्पी नवरात्रि टू ऑल कह रहे हैं उमर फ्रॉम दुबई. और शैलेश और शीला, थैंक यू सो मच फॉर वन आफ्टर अनदर beautiful song.
1: East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: Kenya's premier Asian mix.
3: East FM.
2: Celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
3: East FM.
2: Kenya's premier
3: Asian mix.
4: It's 11:18.
5: Navratri celebrations are coming your way only on East FM. To every other temple, as we will be on the lookout for the best dressed, best dancer, and the most energetic person in the crowd, with exciting prizes and hampers for you to win. And the excitement does not stop there. Guess what? Winners from every temple will head to the grand finale at the Lohana Mahajan Mandal on the 19th of October, where even bigger prizes await. So dress to impress and bring your best moves and celebrate Navratri with East FM.
6: The following speech will happen in the future.
7: I stand here as an achiever, all thanks to my mom. They passed on years ago, yet the care and impact still journeys with me all my life. I stand here because of them. I stand here because they secure my tomorrow.
6: That future is possible for your children with Britam Trust Fund, a fund that manages your cash or assets, keeping them steady so they can keep providing for those you love according to your wishes even after you are gone. SMS hello and the name of your town to 21778. From Britam, your friend for life.
2: Kenya's premier Asian mix continues.
1: East FM.

सच्चा था प्यार हम ना करेंगे समीन. अब दो मैसेजेस भी हैं लेकिन पहले क्या करते हैं, मैं आपको सवाल दे दूं कि दुनिया का सबसे उम्र रसीदा, इतनी लंबी उम्र जानदार यानी लिविंग क्रीचर, जमीन पे रहने वाला कौन है? ये जमीन पे रहते, मैं पानी की बात नहीं कर रही. अब इसकी उम्र कितनी है? 194 years मुकम्मल कर चुका है जमीन पर. सेंट हेलेना एक जजीरा, वहां पर इसकी उम्र गुजरी है. अब 200वीं, कहते हैं अगर 194 हो गया है या 200 भी पार कर लेगा, 200th बर्थडे मनाएगा. ये साइंसदान देख रहे हैं क्यों इंसान को ऐसी, इंसान क्यों इतना जिंदा नहीं रह सकता, बाद में देखते हैं क्यों. लेकिन मुझे बताएं ये कौन सा है जानवर है, एक्चुअली कौन सा जानवर है. और हम बाद में सलीम मेहर की आवाज भी आपको सुना देंगे.

0: जगदीप नांद्रा पहली कॉलर टू गिव मी द राइट आंसर कि ये कौन है 195 ईयर ओल्ड उफ अल्लाह लंबी उम्र और भी दे ओके आप देखते हैं सलीम मेहर क्या कहते हैं
1: Praveen ji, assalamu alaikum. Salim Meher from London. You will never be the right person for everyone. Some will think you are too quiet, too outspoken, too sensitive, or too simple. The people who really love value you will not ask you to become someone else just to be loved. Praveen ji, good morning to you and all your lovely Beh Misal listeners. Have a lovely day.
0: Great hymn, same to you, Salim and Manjula Vishwakar.
2: Parveen ji, अभी जो आपने किस्सा सुनाया बड़ा अच्छा लगा परवीन जी पहले के समय भी किसान की पत्नी अपने घर से खाना बनाकर और किसान के लिए लेके आती थी और फिर खेत में बैठ के दोनों खाना खाते थे मुझे वही सब याद आ गया हालांकि मैंने देखा नहीं है पर मैंने सुना है और पिक्चर में भी देखा है कि दोनों साथ मिलके खाते थे अब तो ये सब पता नहीं होता है कि नहीं होता है लेकिन बड़ा अच्छा लगा वो किस्सा सुन के और जो आपने सुनाया था किस्सा वो कहाँ का था परवीन जी ये जोनाथन नाम का सेशल्स कछुआ है
0: अच्छा ये मुझे लगता है पुणे का ही है वाक्या मंजुला विश्वकर्मा ढूंढिएगा वो जो सिक्योरिटी गार्ड मुझे लगता है पुणे था अच्छा मीर अली राणा और मंजुला विश्वकर्मा दोनों ने सही जवाब दे दिया है और यहाँ पर हैं यासर उन्होंने भी बता दिया है कि ये कौन है और रेखा वालिया उन्होंने कल का लफ्ज आज भेज दिया है ज़रूर करेंगे और चिराग पटेल फ्रॉम कराटीना करेक्ट आंसर भूपी पटेल फ्रॉम किसुमू करेक्ट सबको पता है ये कौन सा इतनी लंबी उम्र वाला
3: परवीन जी साडे भी इन्ने सोने सोने गाने सुन के मन दे फूल खिड़े हुए है सारे नवरात्रि दिया शुभकामनावां कहंदे कबर ते कदर विच ज्यादा फर्क नहीं हुंदा कबर ते कदर विच ज्यादा फर्क नहीं हुंदा क्योंकि दोनों मरण तो बाद ही मिलते हैं क्योंकि दोनों मरण तो बाद ही मिलते हैं थैंक यू जी
0: कदर कोई नहीं करता जब तक मर नहीं जाता वो कबर नहीं मिलती जब तक मरने के बिल्कुल जतिंदर थैंक यू हितेन आपने कहा द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल टेरेस्ट्रियल बिल्कुल समझ जमीन पे रहने वाला टेरेस्ट्रियल हितेन बहुत अच्छे रितु करेक्ट आंसर और शोभा और दिनेश आपने भी सही बता दिया उसका नाम भी दे दिया ममता करेक्ट आंसर मतलब कोई रोंग था ही नहीं और रूपल ने भी सही जवाब दिया है शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर और फातिमा कासम अली करेक्ट रमेश हरिया अभी आपने जो किस्सा सुनाया था हमें हमारा बचपन याद आ गया 1965-66 में हम गांव में रहते थे हमारे पिताजी चचा और दादाजी सब खेत में चले जाते और हमारी माताजी और दादी जी दोनों दोपहर के खाना लेकर तकरीबन 3 किलोमीटर चल के जाती थीं और शाम को भेष और गाय यानी बफलो एंड काओ का चारा सर पर उठा के वापस घर आती थीं देखें उनकी मेहनत और बलिदान से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है समझ वो कैसी औरतें थीं खाना पकाकर सर पर रखकर 3 किलोमीटर चलकर फिर शाम को वापस प्रणाम करता हूँ उन सभी माँ बाप को जिन्होंने बहुत कुछ त्याग किया बिल्कुल सही रमेश हरिया वेरी वेल पुट अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर आपने भी सही समझे ये टॉर्टिस है कछुआ बिल्कुल आंसर था कछुए समझ वो देख रहे हैं कि ये क्या बात है कि इतना लंबा एक तो वो कहते हैं बैठा रहता है ना ज़्यादा फिरता नहीं है ज़्यादा हरकत नहीं करता और इसके जो सेल्स हैं समिन وہ جلدی پرانے نہیں ہوتے. انسان کا سیل آج یہ ہوا کل وہ ختم ہو گیا, نیا پیدا ہو گیا سیل پھر ختم ہو گیا, یہ اس کا رہتا ہے برسوں برس رہتا ہے. اگر پتہ چل جائے کہ سیل کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے تو پھر ہماری بھی عمر 200 سال ہو جائے گی. Amir Ali Rana, thanks for the information about the security guard and his wife. I'm heading to Pune. Maybe I might get lucky. واقعی پونے جائیے گا. I told you نا کہ یہ وہیں کا ہے قصہ.

कहते हैं हम रमेश हरिया के, हमने पढ़ा है कि कछुए की उम्र 300 से 500 साल हो सकती है। बिल्कुल यही कहते हैं, ये कछुआ बहुत कम हरकत करता है। अब यासर कहते हैं, जोनाथन द टॉर्टिस जस्ट टर्न 194, ही हैज आउटलिव्ड 7 ब्रिटिश मोनार्क्स। कहते हैं 7 ब्रिटिश शाह जो थे, इन इस कछुए ने उनको देखा, उनका दौर देखा है। एंड 36 US प्रेसिडेंट्स। ही इज ब्लाइंड फ्रॉम कैटरेक्ट एंड हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ स्मेल। कहते वो सूंघ नहीं सकता, वो अंधा हो गया, नाबीना हो गया, बट अ वीकली हैंड फेड डाइट ऑफ एप्पल्स, फिर भी उसके उसको दिया जाता है खाना, सेब, गाजर और केले उसको दिए जाते हैं ताकि वो रहे बिल्कुल चुस्त। आई वुड गिव जोनाथन अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड एनी टाइम मोर देन मिस्टर डी टी। बिल्कुल इनको देना चाहिए जमीन पुरस्कार। और समय मैंने पूछना था कि यूनाइटेड किंगडम की जो पुलिस है वो क्राइम अपराध पे काबू पाने की कोशिश कर रही है, बहुत अपराध फैल रहा है।

0: आशा भोसले, रमेश हरिया कहते हैं, जब तक आप और अश्विन जी और बेमिसाल अंदाज का ये प्रोग्राम है, तब तक बॉलीवुड के सभी सितारे जिंदा रहेंगे। वाह रमेश हरिया, वेल डन, बहुत अच्छा कहा आपने, कमाल कर दिया। और पहला आंसर जो मुझे मिला है वो यासर का है। आपने बता दिया कहाँ इमरजेंसी नाफिस कर दी गई है, सामिन फौज को बुलवा लिया गया है और जो वजीरे आला हैं उनको उठा लिया गया है, बाकी कई और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्यों? एहतजाज के लिए सड़कों पर आकर अपने नेता अपने रहनुमा की रिहाई की मांग के लिए इमरजेंसी। और आपको मैंने पूछा है कहाँ, आप बता रहे हैं। और दूसरे आंसर देने वाले शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बहुत खूब। और रितु, कमाल है, बिल्कुल सही जवाब रितु का, नीला शेत।
1: आपने तो आज मेरा दिन खुश कर दिया, आंखों से जो उतरी है दिल में, आहा क्या गाना है, और आज का कलेक्शन ही एक्सेलेंट है, थैंक यू सो मच।
0: अच्छा नीला शेत, अक्सर मैं ये गाना ना आशा का इग्नोर कर देती हूँ, तो आज कितने बरसों के बाद सोचा सुना दूं। All the great songs that make your day.

0: गया है और डेमोक्रेसी का गला घोंटा जा रहा है. नीला शेत ने कहा है पाकिस्तान, लेकिन मैंने कहा सूबा, प्रोविंस. एक प्रोविंस पर ऐसा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में नहीं. मैं प्रोविंस का नाम मांग रही हूँ. चिराग पटेल ने भी पाकिस्तान कहा है, नीला शेत ने भी पाकिस्तान नहीं, और जतिंदर.
1: हेलो पुनीत जी, लिखे जो खात इन्ना सोना गाना, मेरा इन्ना फेवरेट गाना, मतलब शशि कपूर गा रहे हैं नंदा.
0: अच्छा, लिखे जो खत तुझे, ओके, आपको पसंद आया, बड़ी अच्छी बात है. अब मंजुला विश्वकर्मा, करेक्ट आंसर है आपका. आपने प्रोविंस का नाम दिया है, ना कि मुल्क का नाम, जैसे कि यासर ने भी करेक्ट दिया है. तो आप ढूंढें वो प्रोविंस जहां पर आज समय पुलिस नहीं, पूरी फौज आ गई है, फौज तैनात कर दी गई है. वजीर आला मतलब कि जिसको आप चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को उठा लिया गया है, उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है. ये कहाँ हो रहा है, ये मैं आपसे पूछती हूँ.

0: लिए है।
1: हमेशा मैं इसको कहती हूँ, ये हमारा सैलरी सॉन्ग है, मिलेगी सैलरी मिलेगी। It's playing Pioneer FM, Kenya's premier Asian mix. And right now it's time for...